0: शरीफा उज्जैन पांच काटा चुरस
1: बुंदा सिटी आए वहां वर्षा के लाखों नौ पैक रह जाए कान बबिया